मुझे रंग दिखने लगे, इतने खूबसूरत, हर कोने में अनोखी रोशनी, बिल्कुल स्पष्ट, सुंदर, मेरी सांसें चलने लगी। और हाँ, तुम समझो न समझो, आजादी जैसा रंगीन समा और इतनी खूबसूरती के बीच पिछली जैसे मैं चमकने लगी।